ये आ जाए यदि अल्लाह को, ये आ जाए मार्जिनाइज यदि सेक्टर्स कि ये आ जाए यदि कॉन्सिक्वेंस कि ये आ जाए लिबरेशन ये आ जाए प्रेसिडेंट लिंगी जवार।